पत्तियों की चाय को ज्यादा दम लगाकर तैयार किया जाता है, जबकि जड़ों वाली हर्बल टी को उबाल कर नोश किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप जो शानदार चाय तैयार करते हैं तो इसकी 2 या 3 टहनियों को 2 या 3 कप गर्म पानी में दम दिया जाता है। मिकदार इस्तेमाल भी अहम है, दिन में 2 कप पीना नॉर्मल है। यहाँ पर मोहतरमा गुल ने हमना हवतीन के बारे में भी बात करते हुए उन्हें अमेजा चाय के बारे में वही इंतबाह दिया है, क्योंकि इनमें बहुत सी मुख्य जड़ी बूटियाँ शामिल होती हैं। हर जड़ी बूटी में असल में केमिकल होते हैं, चूंकि हम नहीं जानते कि वो केमिकल हमले के दौरान बच्चे और माँ पर कैसे असरअंदाज होंगे, इस लिहाज से ये बहुत खतरनाक है। एंटीऑक्सीडेंट की फाजल मकदार भी नुकसानदेह है। जड़ी बूटियों की चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो हमारे जिस्म से नुकसानदेह जहरीली मादों के अखराज में मामलत फ्राहम करती हैं। तहम अगर कुव्वत मुदाफ़त को बरकरार रखना हत्ता इसमें तकवीत लाना मकसूद है तो एक मुख्तलिफ सूरत भी ज़रूर पेज़ीर हो सकती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की फरावानी भी नुकसानदेह है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गुलिस नुकसान की वजाहत यूं करती हैं, जिस मादे को हम एंटी ऑक्सीडेंट्स कहते हैं, उसे मादों से जुड़कर एक बॉन्ड बनाता है, उसके जिस्म से अखराज में सहूलत फ्राहम करता है। जब हम बहुत ज़्यादा एंटी ऑक्सीडेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी देर के बाद ये एंटी ऑक्सीडेंट्स खुद जहरीले मादे जैसा काम करने लगते हैं और जिस्म को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये आसानी बॉन्ड्स बना लेते हैं। जब इनकी सतह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे प्रोटीन अमाइनो एसिड्स और एंजाइम्स के साथ भी बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे ये अपने अफाल को अंजाम नहीं दे पाते, जिसके नतीजे में हमारी होलियाती साख्त बिगड़ जाती है। जड़ी बूटियों की चाय कुदरती इलाज साबित हो सकती है, लेकिन ये मौजज़ाती इलाज नहीं। मोतदिल इस्तेमाल, तिब्बी निगरानी, बाख़बर इंतखाब हमारी सेहत के लिए अहम है। याद रखें, किसी भी चीज़ की वाफर मकदार नुकसानदेह है, हर चीज़ का तवाज़ुन शफा की कुंजी है। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Dik gibi sesi ürkek.

0: के साथ ता 8 जुलाई को दारुल हुकूमत अंकरा में होने वाले सरबराह इजलास में नेटो रहनुमाओं की मेज़बानी की तैयारियां कर रहा है।
1: ट्रंप इंतजामिया ने तुर्की को $750 मिलियन मालियत के F-110 जेट इंजन फरोख्त करने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मीडिया में आने वाली खबरों के मुताबिक इंतजामिया ने जनरल इलेक्ट्रिक के तैयार करदा इन इंजनों की फरोख जारी रखने के अपने इरादे से कांग्रेस को आगाह कर दिया है, जो तुर्की के पहले मकामी जंगी तैयारे कान को कुव्वत फराहम करेंगे। इंतजामिया ने सदर रजब तैयब एर्दोगान को खत्ते में एक अहम शराकत दार भी करार दिया। इस इकदाम को अगले माह अंकारा में होने वाले नेटो सरबराह इजलास से कबल तुर्की के लिए एक अहम सफारती पेशरफ्त और खैर सगाली का इशारा समझा जा रहा है, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदर एर्दोगान से मुलाकात मुतवक्को है।
0: ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म हो चुकी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग खत्म होने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका की 250वीं सालगिरह के सालाना त्यौहार के आगाज पर वाशिंगटन डीसी के नेशनल मेमोरियल में एक जुलूस से खिताब में ट्रंप ने कहा है कि 3000 सालों में हम पहली बार मशरक वस्ता में अमन कायम करेंगे। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब पेंटागन ने कांग्रेस से ईरान जंग के अखराजात और इंतजामिया के दीगर तरजीहात को पूरा करने के लिए $88 बिलियन के इजाफी फंडिंग पैकेज की अपील की है और असेंबली मेंबरान ने मजीद फौजी मुदाखलतों को महदूद करने के लिए करारदादें मंजूर की हैं।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हतमी माहदे के तहत ईरान का ट्रांजिट उजरत का मुतालबा नाकाबिल कबूल है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों या समंदरी गुजरगाहों पर टोल पर मबनी कोई भी हतमी माहदा अमरीका के लिए नाकाबिल कबूल होगा। सदर ने कहा कि टोल की इजाज़त देना एक ऐसी मिसाल कायम करेगा जो कहीं और भी इसी तरह के मुतालबात की हौसला अफजाई कर सकती है। उन्होंने कहा है कि अगर आप ईरान के लिए ऐसा करते हैं तो आपको दूसरों के लिए भी ऐसा करना पड़ेगा। मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, इससे सारा खेल बदल जाएगा।
0: अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के सरबराह मार्क रोटे को कहा है कि ईरान के खिलाफ इनकी जंग की हिमायत न करने पर बहर ओकियानूस के पारिस इत्तेहाद के अराकीन ने इन्हें मायूस किया है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में रोटे के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा है कि हमें मायूस किया गया है, हमें इस मामले में यकीनन किसी मदद की ज़रूरत नहीं थी। हमने लफ्जी मानों में पहले ही हफ्ते में ईरान को तबाह कर दिया, लेकिन अगर वो कहते कि हम मदद करना चाहते हैं तो ये देखकर अच्छा लगता। दूसरी तरफ रोटो ने नेटो ममालिक के मौकफ का दिफा करते हुए कहा है कि जंग के दौरान यूरोप में कायम अड्डों से परवाज करने वाले 4000 से 5000 अमरीकी तैयारे मौजूद थे। मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नेटो रहनुमा ने कहा है कि ट्रंप इत्तेहाद के साथ मुकम्मल तौर पर मुखलिस हैं और किसी भी हमले की सूरत में वाशिंगटन यकीनन यूरोप का तहफ्फुज़ करेगा। ट्रंप की जानिब से नेटो पर यह तनकीद एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब 32 रुकन ममालिक के रहनुमा 7-8 जुलाई को तुर्की के दारुल हुकूमत अंकरा में होने वाले सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे और इसमें सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं।
1: इसराइली ज़रा अबलाग के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से गजा, लुबनान, शाम और ईरान के खिलाफ इसराइल की शुरू करदा जंगों की लागत तकरीबन $205 अरब तक पहुँच चुकी है। खबर में कहा गया है कि जब हुकूमती अखराजात, अमरीकी इमदाद और पैदावारी नुकसानात को मिलाया जाए तो तनाज़ात की कुल इकतसादी लागत तकरीबन $205 अरब बनती है। हिसाब किताब में इनफरादी नुकसानात या निजी शोबे की तरफ से उठाए गए तमाम नुकसानात शामिल नहीं हैं। खबर में मजीद कहा गया है कि अगर तनाज़ात जारी रहे तो बोझ मजीद बढ़ सकता है।
0: इसराइल के साबिक फौजी सरबराह और हज़्बे इख्तलाफ के लीडर गादी आइनकोट बिन्यामिन नेतन्याहू से आगे निकल गए हैं। बुध के रोज़ शाया होने वाले एक नए अवामी सर्वे में गादी आइजनकोट वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से आगे निकल गए हैं। ये नतीजा ओपोजिट शख्सियात यायर लापिड और नफ्ताली बेनेट की अवामी हमायत में कमी के बाद सामने आया है। इसराइल के चैनल 13 टीवी चैनल पर नशर होने वाले सर्वे नतज के मुताबिक 43% शुरा ने आइजनकोट को वजारत उस्मा के लिए ज्यादा मौजू करार दिया और 39% ने नेतन्याहू को तरजीह दी है। सर्वे नतज के मुताबिक आइजनकोट बेनेट पर 21% के मुकाबले में 42% की बढ़तरी रखते हैं और नेतन्याहू ने बेनेट को 41% के मुकाबले 44% से पीछे छोड़ दिया है। सर्वे के मुताबिक अगर आज पार्लियामानी इंतखाबात मुनक़द हों तो नेतन्याहू की लेकोट पार्टी 23 नशिस्तें हासिल करेगी जबकि आइजनकोट की ओपोजिशन जमात यशार पार्टी 20 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाएगी।
1: यूरोप का मकसद अंकारा में नेटो सरबराही इजलास से कबल यूक्रेन पर एक मुत्तहिदा महाज बनाना है। नेटो इत्तेहादी जुलाई में अंकारा में होने वाले नेटो सरबराही इजलास में यूक्रेन के लिए मजबूत हिमायत का पैगाम देना चाहते हैं। नेटो के सरबराह मार्क रूटे के साथ वीडियो कॉल के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि हमारा रूस के लिए पैगाम है कि यूक्रेन मजबूत हो। मर्ज ने कहा कि जर्मनी यह तजवीज़ पेश कर रहा है कि यूरोपीय नेटो इत्तेहादी कीव के लिए मजबूत मालियाती अज़म का ऐलान करें। उन्होंने इस बात पर जोर

0: दिया है कि यूक्रेन के लिए यूरोप की हिमायत कमज़ोर नहीं पड़ रही। उन्होंने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों और बरतानिया के सबक वजीर अजम कियर स्टार्मर, इटली के वजीर अजम जॉर्जिया मेलोनी और पोलैंड के वजीर अजम डोनाल्ड टस्क को जुलाई 7-8 की तारीखों में तुर्की के दारुलहुकूमत अंकरा में मुतवक्का सरबराह इजलास से कबल नाम नहाद E5 फॉर्मेट में मुज़ाकरात के लिए मदऊ किया था।
1: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
2: यूक्रेन के सदर विलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन की इंटेलिजेंस और फौज को 4 साल से ज्यादा अरसे से जारी जंग में इस्तेमाल होने वाली रूसी तनसीबात के खिलाफ पेश की कार्रवाई करने की हिदायत दी है। बुध के रोज अपने एक वीडियो खिताब में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने दिन के आगाज में डिफेंस इंटेलिजेंस के सरबराह ओलिया इवाशचेंको से एक ब्रीफिंग ली, जिसमें यूक्रेन की तवानाई की तनसीबात पर होने वाले हमले भी शामिल थे। यूक्रेनी रहनुमा ने दावा किया है कि मुल्क के इंटेलिजेंस इदारों को रूस की कुछ ऐसी दस्तावेजात मिली हैं जिनके मुताबिक मास्को ने इन हमलों को शदीद दर्द के साथ महसूस किया है। इस तनाजर में यूक्रेन की जानब से महाज से 1200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद अहदाफ समेत मुतद्दद ठिकानों को निशाना बनाने की तरफ इशारा करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी फौज के मुवासलाती मराकज को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी रहनुमा ने कहा है कि मैंने अपने इंटेलिजेंस इदारों और फौज को हिदायत की है कि वो इन तनजीबात के खिलाफ पेश किए इकदाम करें जिन्हें रूसी जंग को तेज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: जापान में 6.9 शिदत का जल्जला आया, लेकिन सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई। हुकाम ने बताया कि जल्जले का मरकज इवाते सूबे के साहल के करीब तकरीबन 50 किलोमीटर की गहराई में था और समंदर की सतह में मामूली तब्दीलियों के अलावा सुनामी से किसी नुकसान का कोई ख़तरा नहीं है। उमूरी सूबे में पैमाइश स्केल के मुताबिक यह जल्जला 6.9 की शिदत से महसूस किया गया। याद रहे कि जापान दुनिया के सबसे ज्यादा जल्जला ज़दा इलाकों में से एक है, जहां जल्जले आना मामूल की बात है। दुनिया भर में आने वाले 6 या इससे ज्यादा शिद्दत के जल्जलों का तकरीबन 5वां हिस्सा जापान में ही रिकॉर्ड किया जाता है।
2: वेनेजुएला की अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेस ने मुल्क में 7.2 की शिद्दत और 7.5 की शिद्दत के 2 जल्जलों का ऐलान किया और कहा है कि जल्जले में कम अज़ कम 32 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। रोड्रिगेस ने जुमेरात को कौम से खिताब में कहा है कि हमें अब तक मिली इत्तलात के मुताबिक 32 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं जबकि 700 से ज्यादा जख्मी हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि दारुलहुकूमत के करीब वाक़ लागोआयर के सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके के बारे में अभी मुकम्मल डाटा इनके पास दस्तियाब नहीं है। रूस मुल्क की शुमाली करेबियन साहल पर आने वाले इन शदीद जल्जलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसके बाद पूरे खित्ते में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है और मुल्क भर में हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए हैं। इंटरनेट की निगरानी करने वाले ग्रुप नेट ब्लॉक्स ने रिपोर्ट किया है कि जल्जलों की वजह से मुल्क के बिजली और टेलीकॉम के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के बाद दारुलहुकूमत काराकास समेत पूरे वेनेजुएला में इंटरनेट राब्तों में शदीद कमी देखी गई है।
0: शिकागो के मेयर ब्रैंडन जॉनसन ने शहर की सकाफती, समाजी और इकतसादी ज़िंदगी में तुर्क अमरीकी कम्यूनिटी की अहम शिरकत के एतराफ़ के लिए अगस्त के महीने को सरकारी तौर पर तुर्क सकाफती वरसा महीना करार दिया है। यह सरकारी एलामिया शहर की जानब से शिकागो और उससे बाहर तुर्की के सकाफती वरसे और सकाफत के बढ़ते हुए असर रसूख के एतराफ़ के हिस्से के तौर पर तुर्क फेस्टिवल सकाफती वरसा कांग्रेस कमेटी के सरबराह खलील देमिर को पेश किया गया है। ऐलान में तुर्क सकाफत, तारीख, रिवायात, खानों, मौसीकी और समाजी खिदमात को मनाने की अहमियत पर जोर दिया गया है। यह ऐलान यकम त 2 अगस्त 2026 को टनले पार्क इलिनॉय में मुतवक्का 30वें सालाना तुर्क फेस्टिवल से चंद हफ्ते कबल सामने आया है। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

0: ट्रैफिक सियासी खतरा से ज्यादा है, तो इस खतरे को संभालने के लिए अपना मैकेनिज्म कायम करता है। आज जो फंड्स ईरान में बेचे जाने का मंसूबा है, वो आलमी फर्मों के लिए हुकूमतों को आप एक तरफ हड़चाम सफारकारी की माली एयानत करेंगे बताने का एक तरीकाकार भी है। आलमी सियासत में सूरतेहाल के मुमकिन नतायज बहुत गहरे हैं। कारपोरेशनों के ज़ेर इंतज़ाम हती रकूम रियासतों के खर्चा पॉलिसियों को यकमना बनाने की इस्तेदाद की हामिल है। ज़रा तस्वर करें कि कल को अमरीका में इंतजामिया बदल जाए, नया सदर ईरान के साथ इस माहदे को यक तरफा तौर पर मनसूख करना चाहे तो इसे न सिर्फ तेहरान हुकूमत का सामना करना पड़ेगा बल्कि ईरान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने वाले अपने मुल्क की बहुत बड़ी मालियाती लॉबियों सरसजात की इंतजामी फर्मों के रद्दअमल का भी सामना करना पड़ेगा। इन फर्मों का फंड इंतजाम बैन अल-अक़वामी माहदों को एक आलमी ढाल में तब्दील करता है जो इन्हें रियासतों के बरखिलाफ तहफ़ दिलाता है। नतीजतन ईरान की निशात नो की मिसाल हमें यह बताती है कि किसवीं सदी में जोग्राफी सियासत सिर्फ जनरलों के नक्शों सफारकारों के सफारती हरबों से नहीं बनती। आज दुनिया कौमी खुद मुख्तार दौलत के फंड्स मल्टी नेशनल प्राइवेट फंड्स के दरमियान गलबे की जद्दोजहद का मुशाहदा कर रही है। इस जद्दोजहद में तराजू तेज से इन कंपनियों के हक में जा रहा है जो पैसे और रसद को कंट्रोल करती हैं। सामिन आज आपने ईरान फंड्स के पस पर्दा आलमी सरमाए के रास्तों पर न दिखने वाले असर रसूख पर बातचीत करने की कोशिश की। आइंदा हफ्ते पैसे ताकत के किसी नए डगर के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान इमरान ओपल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
1: जुग्राफियाई मईशत।